0: रानी खलाई के रा ए पोदी ओपा का ही हाओ मोता का पका खलाई हुई पा ए ओरा ओथे नि हुई पा और आदि नुका थोआ का के रवानी ए ले तेम पुले इंटरनेट के आ खांदे नो आरो आनी
1: आरो मिल गो रेडियो
0: आ नि महो कला मो छुपो दो वन्या का इंटरनेट इन यूट्यूब नि हाओ ए महो कला ओ वरंत को वका केरा वकीना महा